0: नमस्ते प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे विशेष रेडियो कार्यक्रम। आज हम चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा के विकास के लिए स्थापित एक महत्वपूर्ण पहल वाली इब्न सीना अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ रहे। ताजिक रश का इतिहास उन महान व्यक्तियों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सेवाओं के माध्यम से मानव सभ्यता के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। इन महान विभूतियों में अबू अली इब्न सीना का नाम विशेष स्थान रखता है। वे न केवल ताजिक जनता के गौरव है बल्कि मानव इतिहास के सबसे महान चिकित्सकों और विद्वानों में से एक माने जाते हैं। लगभग 1000 वर्ष पूर्व जीवित रहे अबू अली इब्न सीना के वैज्ञानिक और बौद्धिक विरासत आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने चिकित्सा, दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिकी और साहित्य सहित अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। हालांकि चिकित्सा विज्ञान में उनका योगदान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्ध कृति अल-कानून फित अल-तिब विश्व चिकित्सा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। कई शताब्दियों तक ये पुस्तक यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा का मुख्य स्रोत रही। इस ग्रंथ में रोगों की पहचान, उपचार और रोकथाम के सिद्धांतों का विस्तृत और वैज्ञानिक वर्णन किया गया है। इसी महान वैज्ञानिक की सेवाओं को सम्मान देने तथा जनता की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से तजिकिस्तान ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्हीं पहलों में से एक अबू अली इब्न सीना अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पुरस्कार की स्थापना। ये पुरस्कार तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान के विकास में अबू अली इब्न सीना के योगदान को सम्मानित करना तथा आधुनिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करना है। ये उल्लेखनीय है कि अबू अली इब्न सीना के वैज्ञानिक कार्यों में स्वास्थ्य और स्वच्छता का विषय केंद्रीय स्थान रखता है। उनके वैज्ञानिक विरासत में मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम से संबंधित विषयों को व्यापक रूप से दर्शाया गया है। अपनी अमर रचनाओं के कारण इब्न सीना आज भी मानव समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय इब्न सीना पुरस्कार के बारे में दर्शन शास्त्र का डॉक्टर प्रोफेसर सईद अब्दुमनोन ने इस प्रकार कहा है।
1: Абалим Сино шахсияти аст ки на танҳо дар олами шарқ, балки дар тамоми дунё ҳамчун мутафаккири бузург ва пеш аз ҳама табиби хеле бузург шинохта мешавад.
0: अबू अली इब्न सीना न केवल पूर्वी दुनिया में बल्कि पूरे विश्व में एक महान वैज्ञानिक और संस्कृति व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनके नाम पर इस प्रकार के पुरस्कार की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे केवल एक महान चिकित्सक ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट दार्शनिक, विद्वान और साहित्यकार भी थे जिनका मानव सभ्यता के इतिहास में अत्यंत ऊंचा स्थान है। उनकी अमूल्य रचनाएं आज भी स्वास्थ्य विज्ञान और ज्ञान से अनेक समस्याओं के समाधान में योगदान दे रही है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ चुकी है। तजिकिस्तान के लिए भी ये एक गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले देश में विभिन्न पुरस्कार स्थापित किए गए थे किंतु उनका महत्व मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित था। भविष्य में यदि इस पुरस्कार को विश्व के उन्नत वैज्ञानिक और बौद्धिक मूल्यों से जोड़ा जाए तो ये तजिकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत करेगा जो विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा और ज्ञान को विशेष महत्व देता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अबू अली इब्न सीना के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना राष्ट्रीय नेता के एक और पहल के रूप में ताजिक चिकित्सा विज्ञान के परिचय और ताजिक रश के महान पुत्रों के स्मृति को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये एक बार फिर सिद्ध करता है कि शेख रईस अबू अली इब्न सीना एक महानतम दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक और ताजिक कवि के रूप में विश्व सभ्यता के विकास और उत्कर्ष में उल्लेखनीय योगदान दे चुके हैं और उनका नाम विश्व समुदाय के लिए प्रिय और अमर बन चुका है। ताजिकिस्तान का दर्जा के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना चिकित्सा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देने का प्रतीक है। ये आदेश पुरस्कार की स्थापना उसके नियमों के निर्माण और अनुमोदन तथा उसके कोष से संबंधित मुद्दों को भी शामिल करता है। अबोलिब निसीना के वैज्ञानिक अनुसंधान सिद्धांत और व्यवहारिक सुझाव आज भी न केवल अपने वैज्ञानिक और व्यवहारिक महत्व को बनाए हुए है बल्कि आधुनिक समय में विशेषकर संक्रामक रोगों की रोकथाम के क्षेत्र में जिन्होंने हाल के वर्षों में मानवता को चिंता में डाल दिया है विश्व समाज के स्वास्थ्य के विकास में योगदान दे रहे हैं और आधुनिक तरीकों द्वारा भी प्रमाणित हो चुके हैं। आज चिकित्सा विज्ञान अत्यंत तीव्र गति से विकसित हो रहा है। प्रतिदिन नई खोजों हो रही है, आधुनिक दवाएं विकसित की जा रही है और उपचार की नई तकनीकों का आविष्कार किया जा रहा है। ऐसे समय में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वैज्ञानिक पुरस्कार इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अमूजोदा सबोहत रजना एक विज्ञान के उम्मीदवार

कौन और चिकित्सक कौन पर बड़ी जिम्मेदारी डालती है। ऐसे समय में उन लोगों का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है जो मानव जीवन की रक्षा और स्वास्थ्य सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। अबू अली इब्न सीना अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पुरस्कार नए खोजों, महत्वपूर्ण शोधों और चिकित्सा क्षेत्र के उपयोगी पहलुओं को प्रोत्साहित करना का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। साथ ही ये युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान, नवाचार और मानव सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अबू अली इब्न सीना के अमूल्य विरासत वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, अनुसंधान और मानवता की एक महान पाठशाला है। उनकी सेवाओं का सम्मान करना और आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना विज्ञान तथा स्वास्थ्य सेवा के उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रिय श्रोताओं, इसी संदेश के साथ हमारा आज के कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, शांति और सफलता की कामना करती है और हमारे रेडियो के साथ रहें।